सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति, श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय। दिस मेनी डेफिनेशंस आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंड स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंड स्वर्ग।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

नमः। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्ध पीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे,

भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, ये नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी। मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज जी ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जाकर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं? एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं? तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ? मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं। वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है। यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती? महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली,

का महाराज, अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसे ही कल्पना की महाराज, शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनाथ भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं, वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं? धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब हैं, देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। इसलिए हमको समझने की कमी है, ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए है? भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है? बताओ, पता है ना? तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते हैं तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं, भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है? सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है? इस पार से उस पार ले जाना। और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है? आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है। आप भी क्या करते हो? इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप

0: भी क्या करना मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें, मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है। सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद ले जब तक शरीर साथ दे। एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है। इसलिए आज दिव्य आनंद ले। दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबा जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं। तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरुजी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु जी डिवाइन डे, समाधि डे, एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट वन, लकीस्ट वन, दैट वी आर हैविंग दिस सत्संग इन ओम आश्रम, विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ। हियर अवर डियर ब्रदर महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, ऑल डियर भक्ताज, ऑल द सन्यासीज ऑफ दिस परंपरा, आई वुड लाइक टू से हरि ओम टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन सत्संग। विद द ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी वी आर हैविंग सत्संग एट भक्ति सागर। वी हैव गॉट ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी टूडे इवनिंग, ही वॉज हियर, ही वॉज ब्लेसिंग अस, वी हैड प्रेयर विद हिम, एंड देन ही सेड ओके यू डू सत्संग, आई एम गोइंग सिटिंग देयर, ब्लेसिंग फ्रॉम देयर। सो विश्व गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग वेर एवर ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, ही इज ऑलवेज थिंकिंग दैट वॉट माई भक्ताज चाइल्ड डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो विद हिज ब्लेसिंग वी आर ऑलवेज डूइंग, और वी आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग दैट वी डू ऑल ऑलवेज गुड। सो द डिवाइन सत्संग वी आर हैविंग हियर, यू नो द ग्रेट ऋषिज, ग्रेट सेंट्स, दे कम ऑन दिस अर्थ नॉट फॉर देम सेल्फ, बट दे कम फॉर द ह्यूमन बींग, फॉर द क्रिएचर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ birth and death, which is always very hard. We are always trying our best to escape from this cycle, that we can liberate, we can know ourselves for the self-realization. But without guru, without divine saints, without parampara, we cannot know anything. So we have got a great rishi, or we are belonging to the great parampara which has given us the great saints, and the saints, they are showing the divine path. So Mahaprabhu ji is always with us, he is always showing the way. You all have many time heard, or you have experiences in your life that how Mahaprabhuji is guiding us. In any way, I have heard many stories from the Europe that one couple, they were going through the car in the jungle area or somewhere, but they have finished the petrol or diesel, something, and they couldn't go further. And then they were remembering Vishwa Guruji and Mahaprabhuji, please help us, how we will go to the home, it's dark already and nobody is here, there's no petrol pump near us, so please God help us. And suddenly some guy came there with the diesel or petrol, he gave them this thing and they were filling and they have got this thing, oil, and now they were driving the car to the home. So this is the blessing. When they saw, after 1 minute, there was nobody. So this is the divine blessing of Mahaprabhuji. When you have a pure bhava, purity, when you have the Shraddha, Vishwas, believe, then it comes to you. So Mahaprabhuji is always guiding us. He's always giving the divine blessings. I was telling them stories about Guru Kripa, about Gurudev, that without Gurudev, we cannot live in this life. Without Gurudev, we don't know what to do, how to do, when to do. So when Gurudev comes in our life, he shows us each and everything. So I was telling stories that there a saint was there. He was going to a village and there was one person who was not believing in a God, in a saints. He was just living life like an animal. You know, what does animal? Eating, sleeping, having children. This life is animal having. So he was also living like that. So one saint was there. He was thinking that I should give him some knowledge. I should bring him to the God. So he went there and he was asking that, oh human, do you know how do I look, who I am? Then he told, you look like a buffalo, which is in our village. Then that saint thought, still his heart is not clean. He's suffering very hardly. So I should tell him some mantra. So he gave a mantra and he just told, just chant it till 1 year, till I come back. And after 1 year, he went back there. Then he was asking again, so how do I look now? Then he said, okay, yes, now you look like a human. Okay, that saint was happy that mantra is working. He's chanting the mantra. So it's becoming slowly clearing his heart. He's thinking, he's doing. Okay, he said again, okay, I will go and I will come back after some time. So after some time when he came, then he was asking again, how do I look now? Then he told, now you're looking like a devas. What do you say, devas? God. Then he, next time when he comes, fourth time, then suddenly when he saw the Guruji, he was not looking. He came and he ran. He just make a dandavat pranam. Oh Gurudev, thank you. Now you are not a human. You are not a human body, but you are God. You have shown me the divine way, divine knowledge that I can now see each and everywhere God. So that is Gurudev. He bringing us from the ignorance to the knowledge, from darkness to the light. So with the blessing of Gurudev, we are also coming to the light. We are also going near to the God. So this is only possible with the blessing of Gurudev. So we all are luckiest one. We are having the divine master in our life. And we should always follow what Gurudev is saying, what he is guiding us, how he is guiding us. So that's why we always thankful to the Gurudev. Please, Gurudev, always bless us and guide us in a divine way. So thank you for listening. We are having divine satsang on the occasion of Mahaprabhuji's anniversary. So we will have now some bhajans. We have Sukhya Bhai here, Papuji Garg, all the bhaktas, Indian bhaktas here, Devilal ji, Narendra ji, and all children from our school, college, Indian Bhaktas here, all Karma Yogis. So enjoy satsang. Deep Narayan Bhagavan ki, Dev Purishama Dev ki. And I forgot our music teacher, Ashok ji. He's singing very nice, very beautiful bhajans of our parampara, and he's always coming here. So welcome to Divine Satsang, and we will also listen to him. Deep Narayan Bhagavan ki jai. Papu ji garg, kon gayenge bhajan? Aiye gaiye aap log bhajan. हाँ भाई जी गाओ
1: बोलिए सदगुरु भगवान की।

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त, जो गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परम पिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो, आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है? क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में, भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराए।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान। आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से, ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख।

0: या भी
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
0: Tizenegyszer Om lesz.
1: There are different centers.
0: Vannak különböző központok.

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो।
2: अच्छे बोल दो,
3: बोल दो मामा, एक आध बोल दो, फिर से
1: बताओ थे,
2: बोल दो,
0: बोल ले,
1: नहीं, हाँ बोल ले,
3: ठीक है।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधव माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

0: के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी विद्या के अंदर है, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है, ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है, और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं, 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम? अरे बहुत, तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है। 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ, और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, द लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज वाट वी कॉल इज संस्कृति, संस्कृत। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज राउंड द वर्ल्ड, मे बी 2-3 नॉट एवरीवेयर देर इज द वर्ड्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इन मैनी मैनी मैनी मैनी कंट्रीज, एंड ऑल्सो द कल्चर गोज फ्रॉम द भारत। All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia is also where the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं, सब कुछ है अपने देश के अंदर में। और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल our Jnanputra is here, they are coming, and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now I would like to give the words to our Mahamandaleshwar, Sri Jnaneshwar Puri Ji Maharaj. Jnaneshwar Puri, Jnanesh, Nami, Jnan or Ishwar. Do mil jaye to kya chahiye? Aur Jnan nahi aur Ishwar mil jaye to bhi wo dabke kyun aaye to kune thun? Hain? To Ishwar aur Jnan dono ka milan hota hai, tab Atma Paramatma ka sakshatkar hi ho gaya, samjhe? So now, in English and in Hindi, and in Sanskrit, and in Croatian, four languages at once speaks. Wohi Maa Mandaleshwar ban sakta hai, beta. Four languages, Hindi, Sanskrit, English, Croatian, and maybe someone more. So, hamare Jnanputra ko, he will introduce our Jnanputras and our brahmacharis of this ashram. So, Jnaneshwar ji, aap bachchon ko give the children that kind of suggestion and instructions that they get inspiration to study properly. Bato. Sadeep Narayan Bhagwan ki
1: jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva ki jai. Hindu Dharam Samras Mara Krishna Bhagwan ki jai. Vishwa Guru Mamalesha Parasama Shwamji Satta Guru Deva ki jai. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shantihi Shantihi Shantihi. As you all know, our Sri Vishwadeep Gurukul is a school for which for the last, let's say, 20 years is educating the children. Some of them you can see here. it was a Swamiji's project which our dear Vishwaguruji started long back, because education in a country which so huge population like India, it's very tricky. The system of Gurukuls, which was used from the ancient times of rishis, were still active in the beginning of 19th century, but with the coming of British to consolidate their power, they slowly dismantled this Gurukul system and started the English-based system. But also not for everybody, only for selected people and so on. So the story, what I'm telling you, is from the end of 19th century. And the first school and actually university was actually founded in 1885, so which is quite late in Bombay and so on. So this kind of school, which has very limited approach, left India quite, uneducated, and there were many schools, many children, many villages without any school or any kind of education. We know in Europe we have different system of numbers. Croatia has 5 million people altogether, which is completely, when we put in Indian terms, this is approximately one city. So India has at the moment 1.5 billion people. We invest, we cannot actually comprehend, that's really huge number. So it means...
0: And Croatia have 50 lakh, sorry.
1: So we cannot comprehend these numbers that in one village like Jadan, they can be at least 5,000 to 10,000 students. In the area of Marwar Junction where our ashram is situated, there can be at least 50,000 to 60,000, if not more, children who are studying. So now, the problem is how to give education to all these children, because education takes money. Education requires money, education requires books, and so on. So, there are many, of course, the government is doing their best, and there are many NGOs, there are many societies which are helping, and one of societies which Vishwa Guruji formed is under the name of Gyanputra, which basically means the sons of the knowledge. So these people, these children, and the families from whom these children belong, they got free education, free books, free many things. Now, it's not a question of only education, because nowadays in our Western-based education, because of so much subjects we have to study, is actually the moral and thinking that is actually removed. Because to teach morality, it's actually the subject which is the base of all education, because first we have education from our parents. But now the parents go to work when you are 3-4 months old and you go to some kindergarten. So in this Gurukul, Swamiji is trying to bring back this old tradition, this old Indian tradition of rishis, in which the morality should be included in our, how to say, in education. But from the beginning, not from the end. Not when you go to the university that you start to learn about what is the morality and different ways and so on, but from the beginning. Because now in our science project, let's say, they can teach you how to make TNT, they can teach you how to make the bomb, gun, or whatever. But they will not teach you why to use it and how to use it. Not how to. They will teach you how to use it, but not why not. So this is the basic problem which now we can see in all around the world with all the many all the things terrible that are happening. So because the people have the knowledge how to use the things in a bad way, but they don't have the mentality to decide that this is good or not good. So this thing Swamiji is trying to achieve in this Gurukul, to have according, because the modern education is modern education, we have to have it to be competitive in this world, but still on top of that, Gurudev is trying to put one more layer, which was actually before, even in our country was there, but then now we have these changes in education. But everything is going for the globalization, how the people can move from one place to another. So the children are actually educated in a very short spectrum. Here I had the opportunity to study with one teacher who was, she was brought up in a Gurukul system. And in a Gurukul, they have studied all the Bhagavad Gitas and Ramayana and Vedas and this and that. So they studied everything. So actually, I know, I have first-hand experience that I know that what they were studying, what they were learning in the Gurukul. And our Pushpaji from Jaipur Ashram, from Jaipur Yog Sadhana Ashram, which you met many times on webcast, she's also studied in Gurukul, which is a completely different system of study than nowadays, which is very commercialized. So this kind of studies we are trying to give to the people, to the children here, and these children will then hopefully try to improve the status of these villages which is around us. Because the base of the India is in the villages. More than 67% of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं आप स्कूल का समय हो गया चालू भी हो गए आप मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं एक जगह में बैठ नहीं सकते नींद तो आती रहती है अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है एग्जाम तो आएगा दिसंबर में जब एग्जाम आएगा मार्च में एग्जाम आएगा अप्रैल में अभी क्या स्टडी करना तो आप ऐसे कीजिए 365 दिन है आप आज 6 महीने के लिए खा लेना एक दिन में 4 रोटी आप लेते ठीक है सुबह 2 शाम को 2 ठीक है मांगे चलो 5 रहते 6 लेते तो 6 महीने में कितना दिन होगा 180 दिन 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना 900 रोटी तो ठीक है आज सुबह हम बना देंगे भंडारा 900 रोटी सबको खानी है फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से संभव है इतनी मामूली चीज है अब क्या है 900 रोटी खा लीजिए क्या है कोई खास नहीं है 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी ऐसे नहीं चलता है ना तो अगर ऐसे नहीं चाहते आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं पूरी 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में वो एक रात भी नहीं 2 घंटे में अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में 11 बजे समाप्त सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे संभव है या नहीं बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल तो पढ़ना होता है रोज डेली तो बड़ाई टुकड़ों में होता है जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं हर दिन 5 रोटी खा सकते कोई टेंशन नहीं 10 रोटी भी खा सकते हैं लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते हैं 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा तो 6 महीना कितना हो गया घंटा 180 तो हो गया नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं 1 घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है तो आपकी मार्क्स जो आएंगे आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी आपकी जो आईएएस आईपीएस बनना है सब बन सकते हैं लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे अगर एक साथ में कोशिश करे तो क्या होगा, असंभव। इसलिए आपकी यहाँ आश्रम में रहते, यहाँ कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा, पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहाँ भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहाँ क्या करते, मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते, कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहाँ 95% के 100% के 80%? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से एक दो तीन दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव मैनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata and other Upanishads. So definitely we are open university, we are open school. Of course it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish, and I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by work and so on. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख

Good. Thank you. Thank you and main hunyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now only the hamare gurukul ke bacche jo hai turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. All the vidyarthi turn to the, don't go close to the bhir, chela nahi dikhega beta. Tu idhar se khada ho ja. Bas beta, yahi khade ho ke de, ya nazdik aa ja, bas. Okay, we will see if when is. देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय. सत्य सनातन धर्म की जय. भारत माता की जय. ओम शांति शांति शांति. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं येव वन्दनात् मृत्युर्मुक्तिर्माम्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं येव वन्दनात् मृत्युर्मुक्तिर्माम्. ओम शांति शांति शांति. बस अब मेरी तरफ झुक, आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हो, बैठ जाओ. बस थैंक यू. सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली already in the school when we have the prayers and all the students there. Now is the time for prasad. Dikh rahe hain sabhi ki nahi dikh rahe? Yes, time for prasad. Theek hai, to yahan apne yahan har mahine mein ek do baar aur main aaunga tab tumhare ko pure sansar ki yatra kara denge swami ji television ke zariye.

0: ओम शलकपुरजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shilakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alakpurichiho Siddhapit Parampara.
0: My dandvat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalesha Maheshwaranand Puriji.
1: A uctivá poklona našemu mistrovi Shri Mahamandalesharovi, Mahamandalesharovi Maheshwarandovi.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Pozdrav všem sannyasinům, kteří tu jsou.
0: And Hari Om to all of you who are present here.
1: A Hari Om vám všem, kteří tu jste.

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it. Puspa, one version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

बोले श्री नारायण भगवान की जय, सतगुरु देव की जय। ओम बोली श्री नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, हिंदुधाम साम्राज्य सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी योगी राज की जय।

0: श्री अलकपुरी महादेव की जय। देवा दि देव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानंद भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्मा माधवानंद पुरी जी महाराज की जय।
2: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी
0: गुरुदेव की जय।

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिब्रज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री
1: श्री श्री 1008 विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी महाराज की जय।

0: की जय। राधे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ डी सी सुरंगानंद दिव्यराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो टीवी। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि हरि हरि। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटा इट्स भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

आने लगी महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसे लागी लगन, मेरा हो गई मगन।

बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए मीरा के श्याम की जय। आखिरी एक भजन कबीरदास जी का, चदरिया झीनी रे झीनी या तो राम रंग रस बीनी।

प्रीत न करी जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो।

शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। एक बार

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

सदगुरुदेव को प्रणाम, सभी सज्जनों को प्रणाम। और सुनो, इनफ, धन्यवाद। A little composition written and composed by me. Please hear and entertain, and please peace to God and prayer to our Gurudev. In the words, nothing. झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, झूठे जगत का झूठा तमाशा, झूठा कारोबार है।

0: जी गुरुदेव। मिला,
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सब संतन सिर ताजे, सब संतन

0: गुरुदेव की जय। शांति शांति शांति।
1: आपको काफी काम कर रहे ना।
0: जी जी
1: भी आपका, लेकिन फिर भी आपका बहुत।
0: अरे अरे, वो भी पहला मौका है। पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपके शरण में, देश विदेश में, आपके आश्रमों में, जहाँ आप आदेश करो।
2: कमरा दे दिया उनको, कमरा दे दिया।
0: रुकूंगा, आप जब तक कहोगे रुकूंगा।
3: भोले शंकर भोले, ओ, ओ, ओ, ओ शंकर भोले,
0: शंकर भोले। रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी, आई एम प्रेजेंटिंग गुरु शरणम।
3: जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, दादा दादा दादा। जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, ये सारा जग बोले। जय शंकर भोले,

शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः मातृपिता गुरुदेवाय नमः भारत भूमि नमः ओम।